0: आकृष्टवन्तः। इस्लाम धर्मावलम्बिनां द्वितीयं महत् बकर ईद इत्याख्ययम् ईद उल जुहा पर्व अद्य आराष्ट्र मस्जिद प्रार्थना गृहेषु समायोज्यमानमस्ति। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वणः सप्ततितमे दिने बकर ईद पर्वणः समायोजनस्य धार्मिकविधि वर्तते। अद्य इस्लाम धर्मावलम्बिभिर्जनै प्रातः स्नात्वा समीपवर्तिनं मस्जिद ईदगाह प्रार्थना गृहं गत्वा सामूहिकरूपेण नमाज पठनस्य परम्परा वर्तते। नमाज इति पठनानन्तरं परस्पर परम शुभकामनायाः आदान प्रदानं विधीयते। अवसरेस्मिन् काष्ठमण्डपस्य दरबार मार्गवर्तिने नेपाली जामे मस्जिद गृहे काश्मीरी मस्जिद गृहे आराश्रम विद्यमानेषु अन्येषु मस्जिद प्रार्थना गृहेषु इस्लाम धर्मावलम्बिनां सम्मर्दो भवति। अवसरेस्मिन् अद्य सर्वकारेण सार्वजनिकावकाशः प्रदत्तो वर्तते। अवसरेस्मिन् राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन उपराष्ट्रपतिना रामसहाय प्रसाद यादवेन अन्यैः उच्च पदाधिकारिभिश्च शुभकामना सन्देशः व्यक्तः वर्तन्ते। सूचना सञ्चारमन्त्रिणः डाक्टर विक्रम तिमिल्सिनाभिदस्य संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य अन्तर्गतस्य अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चारसङ्घस्य दक्षिणपूर्व एसिया एसिया प्रशान्तक्षेत्रस्य च सदस्यराष्ट्राणां कृते क्षेत्रीयप्रतिनिधेः किशोरबाबु युरावल्ला इत्यस्य च मध्ये ह्यः शिष्टाचारमेलवार्ता सम्भूता अस्ति। मेलने अनयोर्मध्ये नेपालस्य प्रविधे समावेशितायाः परस्परसम्बन्धस्य स्थिरतायाः सूचना प्रविधेः विकासस्य च विषयेषु विमृष्टमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते इति समाचारः।
1: नेपालमा धूम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले वार्षिक 34,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ, तर यो लतको अन्त्य सम्भव छ। यदि तपाईँ धूम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको लत त्याग्न चाहनुहुन्छ भने आजै गोप्य र निशुल्क परामर्श सेवा हेल्पलाइन 1132 सम्पर्क गर्नुहोस्। यो परामर्श सेवा कार्यालय समयमा उपलब्ध छ। याद राख्नुहोस्, धूम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको लत त्याग्न परामर्श सेवा हेल्पलाइन 1132।
2: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, टेकु, काठमाडौँ।

0: थो रेडो नेपाल ख नेपाल भाषे समाचार जो पेश पखिना दिस थौ नेपाल सम्बत छिंस पिखु द अनलातो द्वादशी वैगो आर्थिक द या बजेट नेभे त संघीय संसद या मङ्का बैठक धोए जै 15 गते शुक्रबार निनेसिया पेताइले चुनिगु जुगुदु प्रसभा मिवा बैठके सभामुख टोल प्रसाद अर्याला पेताइले जुइगु मङ्का बैठके नीति जसिपा श्रोता इले प्रतिनिसभा व राज्यसभा सांसद पिन्त बोटी क्यात इनापेना दिगुदु नेपाया संविधान 2072 जारी जुतङका संविधान हे व्यवस्था याना दे दशेट 15 गते न्युक्ली सदन या मङ्का बैठक बजेट न्यवेगु मिति कोछुगु ख गणतन्त्र दिवस या झोले लाका जेठ 15 गते बजेट न्यवेगु व्यवस्था या नातगु ख तथे प्रतिनिसभा बैठक धासा जेठ 15 गते शुक्रबार शनिला न्यातत्या इले चुनिगु सभामुख अर्याला ताइदिगु दु अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले चालु आर्थिक दह या शोकगु त्रैमासिक इतक पुँजीगत खर्च अपथा वे मफुगु स्वीकार यनादिगुदु आर्थिक सर्वेक्षण 2082-83 संसदीय सार्वजनिक दिशे मन्त्री वागले अर्थतन्त्र या वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी व्यादिगु ख थोयथे विश्व परिवेश आर्थिक वृद्धिदर मोजुगु तथ्य निभुवा दिशे नेपाल आर्थिक वृद्धिदर सुङ्गु फुति जे न्यागो प्रतिशत बराबर जुइगु जानकारी ब्यादिला अर्थतन्त्र आकार खुइ खुगु खर्ब थेनिगु विषय तक वेक्ल नेतना दिगुदु थोइले राजस्व मुकेगु सुधार जुगु न थाइदिगुदु थो सर्वेक्षण किङ्गु विषय बजेट पाखे सम्पूर्ण न्यागु अर्थमन्त्री थाइदिगुदु विश्व अर्थतन्त्र विस्तार सुङ्गुपुटी छगु प्रतिशत सीमित जुइगु अनुमान दुगु मन्त्री वाग्ने थाइदिगु ख वेकया कथा नेपाया उपभोक्ता मुर्दा स्मृति खुकु प्रतिशत चुए लाइगु जुगुदु नेपाले बागमती गण्डकी प्रदेश बाहेक फुकु प्रदेश आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रिय औसत छिमे कुए लाइगु वेक्ल कना दिला नेपाया मुख ग्रास्त उत्पादन कृषि लागा नि पेङ्गु प्रतिशत व गैर कृषि लागे ने खुगु प्रतिशत योगदान जुइगु वेक्ल कना दिला फागुन तक पी 600 ओ नेगु मेगावाट मत उत्पादन क्षमता थिङ्गु थ्यादिसे वेक्ल गुइगुगु प्रतिशत जनसङ्ख्या मत थिङ्गु न थैदिल फुखे बोगु चिन्दपुरी धुम्का गु इले दुनावोगु पुरातात्विक महत्त्व सम्पदा या पुननिर्माण पु वङ्गु मधुनी विक्रम सम्बत 2072 वैशाख 12 गते फुका च सुइनगु जिल्ला गुसौ निगु सम्पदा क्षति जुगु ख ओकी मध्ये 2082 फागुन मसान्त तक च्यास व चिन्यागु सम्पदा पुननिर्माण पुङ्गु अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले भिग प्रसभा बैठके पेसिनादिगु आर्थिक दह 2082-83 आर्थिक सर्वेक्षण नेतना तगु दु नेना चुङ्गु आर्थिक दह या फागुन मसान्त तक न्यागु सम्पदा या पुननिर्माण पुङ्गु न सर्वेक्षण नेता तङ्गु दु विश्व सम्पदा दलखे दुत्यागु पशुपति लागा हनुमान ढोका दरबार लागा यलौ खोप दरबार लागा चुचु सम्पदा अजन पुननिर्माण जिफुगु मधुनी आमुक सचिव न्यागु सम्पदा पुननिर्माण जि ल्यादनी राष्ट्रिय सभा मेगा बैठक प्रतिनिसभा दुजर निर्वाचन नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 व मतदाता नाधल नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 या त विचार या धैगु प्रस्ताव स्वीकृत जुगुदु बैठक प्रधानमन्त्री बालिन शाह या पाखी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुविता गौतमन ह्यव्यादिगु विधेयक सैद्धान्तिक सहलिपा सर्वसम्मति स्वीकृत जुगु ख बैठक कानुन मन्त्री सुविता गौतम विधेयक या विशेष प्यावोगु न्यसया लिस ब्यादिसे राष्ट्रिय जनगणना कथा जनसङ्ख्या लिदशा प्रतिशत कोसिगु व विधेयक अपाङ्गता जुपी ल्युने लापी व मो ल्या दुपिनिगु चुख दुसा संविधान कथ पिङ्के गुण थैदिल मुस्मातेको बकर ईद इद उल जोहा नख देन्यङ्क मस्जिदे हनाचुङ्गुदु इद उल फित्र या खुइन गुनु धुङ्का बकर ईद न्याकेगु धार्मिक विधि दु थौसुते मोलिया मस्जिदे वना मङ्का कथा नवाज बुनिगु व पिन्तुना कालबिल ल्यागु चलन्दु यहाँ या नेपाली जामे मस्जिद काश्मीरी मस्जिदे मो मुस्मातेगु बोती दै थौ नेपाल सरकार सार्ङ विधा नापम बिगुदु थोयदुथी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल व उपराष्ट्रपति रामशाह प्रसाद यादव बकर ईद लसता सकल या त पिन्टुना देशना दिसे थजियाको नखति सामाजिक न्याय व समता या भावना त ब लागेको यथना दिल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भदौ 23-24 गते या जेनजी आन्दोलन या झोले मानव अधिकार उल्लङ्घन या झाका बारे अनुसन्धान प्रतिवेदन छिले त नेपाल सरकार या त पौ छोगुदो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पूर्व सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुवा गुरुङ या त नुगु कानुन देका कारु या त आयोग धागुदो आयोग पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल या त न छानबिन या त इनाप यागुदो नखु जेल राष्ट्रपा सभापति रवि लामेछान या त जेल बिस्कुपी नापो वेक या त न अनुसन्धान या त सिफारिस यागुदो अथे छुछु सांसद पिन्त नेपाली सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ अधिकारी या निजामती व सुरक्षा अधिकारी पिन्तन अनुसन्धान व कारु या त भुगुदो अथे उब्ले या जाँचबुझ आयोग नाय गौरी बहादुर कार्की या त न छानबिन या त इनापी आगुदो आन्दोलन ह्याने व लिपान मानव अधिकार अख बिचा तपी अभियान तापी गणेश कार्की सुलभ खरेल असीमान बस्नेत आशिका तामाङ भाग्य न्यौपाने टङ्क दाहाल भिक्टर पौडेल लिसे थिति मनुते त अनुसन्धान या त यामा धका प्रतिवेदनले न्यवतगुदु सर्वोच्च अदालत गोला प्रथा प्रक्रिया ह्याना चुनिगु धागुदो आयोगका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद खोराला मिगाछोको प्रेस विज्ञप्ति जारी याना दिसे गोला प्रथा प्रक्रिया त छेला पेशी व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 जारी जुया ज्या जुया चुङ्ली थुकिया त मचिकेगु यतना दिल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हिमाली पर्यटन व उखिया संरक्षण थौ या इले अतिक महत्व जागु दहिदिगुदु सगरमाथे था उना लिहा उयादिपिन त हनिगु झोले वेक्ल चपुनाया वोगुली नाप आपल फोर मुगुली थो पङ्गया हात्या जुगु नाप कनादिल ए महानगरपालिका थुसी ने पेङ्गु थासे मनसुनजन्य विपद या जोखिम जी धागुदो विपद या जोखिम जीगो थासे जन धन या क्षति भो या त उक्त ज्याजो यागो तयारी दुगु ए महानगरपालिका नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशी जानकारी व्यादिगो ख मनसुनजन्य विपद व्यवस्थापन व पूर्व तयारी या त प्रभावकारी या त सुरक्षा निका नाप थिति सरकार वाल संस्थातेगु सहकार्य क्षमता अभिवृद्धि तालिम नाप कृत्रिम अभ्यास ज्याज पोङके धङ्कुगु वेक्ल थैदिल लिपाङ्गु इले ए अपुया चोङ्गु सहरीकरण ढलान प्रक्रिया सरकार वाला निका याके सहल मयासेहे सतक मुइगु व ल्यागु ज्या खुसी जुगु विपद या घटना जुगु ज्या चोङ्गु ख सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसेना व संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ या प्रतिनिधि किशोर बाबु एराबल्ला दोथी शिष्टाचार नक्सा नाप्नादिगुदु वेकअपिन दोथी नेपाया डिजिटल प्राथमिकता समावेशी कनेक्टिभिटी सूचना प्रविधि विकास या विशेष सल ब्यागुख नाप्लागु चोले सञ्चार मन्त्री डाक्टर तिमिलसेना अन्तर्राष्ट्रिय साझदार संस्था नाप जाना बालाको भिङ्क ज्या या त नेपाल सरकार तयार दु थैदिल सभामुख डोलप्रसाद अर्याल मानव अधिकार या रक्षा या त मङ्का कत कुत यामा धैदिगुदु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग या ज्याजोले वेक्ल थथे धैदिगु ख वेक्ल मानव अधिकार संरक्षण व अपराध मुजुगु समाज देखे त सकल पक्ष ग्वाली यामा धैदिगु ख स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता स्विजरल्यान्ड जेनेभा गोसागोगु नेगुगु विश्व स्वास्थ्य सभापति क्या नेपाल यहाँ छादिगुदो सभा मन्त्री मेहता या त नोको या कथ त्याकुगुली नेपा या स्वास्थ्य कुटनीति व अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च नेपा या त तथङ्गु हना ज्याजुगु मन्त्रालय स्वप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी धाइदिगु ख अन्न मन्त्री मेहता भारत भुटान चीन या स्वास्थ्य मन्त्री पिनाप बिस्क बिस्क नाप्ना दिगु ख ए महानगरपालिका सहकारी विभाग रोहबरे बुद्ध दर्शन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड स्विपेमा बचतकर्ता या बचतदा लितव्युगुदो ए महानगरपालिका छले ह्यानाचोङ्गु सहकारी संस्था मिक छगु लक नेदो दाँतका बचत याना तपी स्विपेमा बचतदाता दुजपिन्त बचतदा लितव्युगु ए महानगरपालिका सहकारी विभाग जानकारी बिगुख सहकारी आवेगु लक्ष्यदुनी न्यागु लाख तका तक बचत एना तपी बचतकर्ता या दाली त बिगु योजना देखा तगुदु ब्रजाचारी अध्ययन मण्डल या पिन हेकगु पलिस्ता दि या क्षेत्रपाटी प्यालिसे तजिक हङ्गुदु इन्जिनियर कर्णेल सनराजा ब्रजाचार्य नासी प्राध्यापक डाक्टर हृदय रत्न ब्रजाचार्य मु पासी प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान ब्रजाचार्य बियादीको कलश पूजाविधि व देव पूजाको पूजाविधि समुदिन हापाङ्गु निवातको जुगु तालिमे पोती क्यादिपी चेम ब्रजाचार्य गुरुजु पिन्त कसागा दसिपौ व अध्ययन मण्डल या लोगो दुगु ब्यास लहलादिगु ख उगु तालिम सोनिग व पोत या तिथि महाबिहारी पूजाविधिमा यानावया चुनादिपी ब्रजाचारी गुर्जुपिन्त अझ पोख्त यागु तातुनागु प्रशिक्षक प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान ब्रजाचारी कुनादिगुदु अध्ययन मण्डल या पदाधिकारी व पदाधिकारी तिरिमेजु पिन्स मञ्जुश्री स्रोत पाठ याका शोभा महर्जन ब्रजाचार्य न्याक कुगु ज्याचोले बद्री रत्न गुर्जु ज्ञान पूर्णहम एकको गुर्जु पिन्त दीक्षित यानादि म वेक ब्रजाचार्य गुर्जु पिनिगु इन्स्टिच्युट हे जुगु ख मु पा प्राध्यापक डाक्टर ब्रजाचार्य कनादिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरान नाप जुयाचुङ्गु सम्झौता या शर्तपति थ लेता मफुगु धैदिगुदु वेक्ल इरान सम्झौता या त ल्या तासा तबि आतक सहमति यागु इले मथेङ्गुली अमेरिका हाक्न आकुन या फैगु ख्याचो ब्यादिगुदु व्हाइट हाउसे मन्त्री परिषद बैठक लिपा सञ्चार कमित नाप खलनादेश राष्ट्रपति ट्रम्प इरान नाप सल कोचा मफुगुन हितनादिगु ख थुके इरानी सरकारी टेलिभिजन निगु पछि दथि सम्झौता या मसौदा सान्जिङ यागु दाबी यागुदु थोके हर्मुज जलमार्ग याक्न च्याकेगु अमेरिकी सैन्य मो यागु व इरान या त नौसैनिक नाकाबन्दी चिके त मुख नितनातगु ख तर व्हाइट हाउस थोपति मुकुगु बुख तका अस्वीकार यागुदु थौ कोशी प्रदेश नाप बागमती व गण्डकी प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा भच्चा मध्य प्रदेश नाप लुम्बिनी कर्णाली व सुदूर प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा भच्चा व बागमती व गण्डकी प्रदेश या तराई लागा नाप छग्निको थासे वा वैगु तुकमा यागुदु सुदूरपश्चिम व लुम्बिनी प्रदेश या तराई लागा तानोइगु तुकमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग यागुदु मिग सोनिगोले मिग सिमे क्वाजो मुहो जुगु ख मिग निन हेगु पुटि पेङ्गु डिग्री जक क्वाजो लुगु ख थौ निन हेगु निसे नि गुगु डिग्री क्वाजो लुइगु थुक्मा यागुदु थौ सुथे न्याता इजुया पेङ्गु मिनेटे लुगु सूर्य बहनिसिया नेता इले दिवनिबा बी नेपाल भाषा समाचार कोचाल शुभ
1: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
2: नागरिक लगानी कोष।
3: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
4: नेपालको समावेशी आवाज।

अब प्रस्तुत गर्दैछौ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू बारे जानकारी।

Sherbi Keki Larim, Sherbi Doluki Larim, Sendula, Jun Goto, Sherba, Achunup, Ijunum Dan Sangatali Terila, Gomchoklang, Alarim Jinkyogma, Grisma, Sherba, Sogne, Tastele. Sherbike Chotang Rikshungtiwa Yargetongublatang Sungkyup Kitup Mikulki Jinkyongki Wau Di Larim Lengetiwi Sarvajanik Seo Prasaran Radio Nepal Ne Nariki Jafurwi Chermo Sangyur Sherbi Sangyur Sinsima Chuzo Jitang Kama Changala Jamulinki Dasa Kanila Jun Wasinang Senang Thupke दिल्लारीमा लङ्गेतिवी रेडियो नेपालकी एफएम ब्यान्ड तिवा 98.1 मेगाहर्ज तेमा सेनाङ थुप्की सिसी रेडियो नेपालकी वेबसाइट www.radionepal.gov.np तेजेन रेडियो नेपालकी अनलाइन पोर्टल www.radionepalonline.com तङ दिल्लारीमकी फेसबुक पेज सर्वेके शेरवातिवी घोषी सिरुप पेज तेमा तङ रेडियो नेपालकी फेसबुक पेज तेमा सङ चम्बुलिङकी चुकुइ दासल जुन वसिनाङ नंग थोकिए शिर्वी डोलुकी ल्यारिमला शिर्वी चिछोक टङ्ला जुने छक्लैन नङ्गिन जुन गतोप कुछप तिवा चिछोक टङ्ला सब्जु पुलुक तिवा शिर्वी चिछोक टङ्गी छप्सित गोठी तिवा लामा खेनपोतिवा शिर्वी सर्गेत पातिवा तङ सकुल नाछोक्ला छक्लैन फेन्छन पो नङ्गिन जुन गतोप शेर्वा आचुनुप इजिनुम तिवाला फेप्सुने आर उडा किरूप चिछोक टङ्गी लेन तिवा तङ यम्बा कोर्ना सोकी कोला लेन खाक्सेनपोतिवा ख्याफेलेखी फन वेसेसे आरिङकी लारिमला तन्दा गोचुन वतोप नाङपा सङ्गेपे तुछेन गिर्पो सागादावा तुछेन कि कोला ख्यान्थोक नगोफ टरिक्यान वेब सगदवा दुसेन चुक्यान चे दि दुसेन कि रिम्बाला खाङखाङ खिगो कि तङ दि दुसेन चिला खाक्सेन पो वा सिरुप कोर्ना सुकी कोला ख्यान्थोक तेरुप टरिक्यान वेब तिकी तन्दोक्लात सागादावी तुसेन कोला खेन्पो नुर्बु शेर्पा तङ आचार्य नुर्बु शेर्पा कि नङ्गोप सुङ्लप तिवासङ जोगो टरिक्यान गोतुप तपकि ल्यारिम तिङसोक सेक सेनुनाङ सिने लेङ्गे तिवा तेरिला सोपिन लसी त गम्सोक्ला दे ल्यारिमला लुचिक जोगो टरिक्यान गए लसी सेन्डोनाङ

लसो फ्राफुल्ला तिनी मजुश्री सम्मत 2862 तालु डफ्रेलाला छेपा चुइसेङी विक्रम सम्मत 2083 साल जेठलाला चुइसेब्ली नारे बिहिबार चु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गुरी राख्दा डेनमुला ङा सूर्य मोक्तान मुस्लिम धर्म तेन्मा गदेला ङिच्छा ग्रेन प्रिबा बकर ईद ईदुल जोहा तिनी मोख्युल लामन ग्लारी लोलो लोलो गेखोर सङ्सिदाङ भन्मुला ईद उल फित्र अर्थात् रमजान प्रिबाला ङिचुइसा रेरी बकर ईद धार्मिक ठिम्मुला मुस्लिम धर्म तेन्मा गदेसै तिनी स्योरिन राङ्ला लुई खुसे ङाब्री मुबा मस्जिद अथवा ईद गाहारी निसै बिरान ग्लागिग्री जम्सी नमाज डो भिम्मुला बिनासन ग्लागिग्री नमाज डो सिटिन बालिचा गिक्से अर्कुद ज्याबडनमा किनमा पिनमा नुन ठिम्मुला प्रिबला अवसरी ज्याबडनमा दोन्सिमान युल्चोहो रामचन्द्र पौडेल से बिना नेपाली हुल्बा डिक्सी राष्ट्रिय भावना द कोङ्ब सोसे बिना नेपाली हुल्बा च्योचोरुन हिन्मा साङ्गेर पिनमारी खामगा बिसे सुङ्से बमुला सुनानुलासे रो युल्चोहो राम सहाय प्रसाद यादव सेनुन बकर ईद प्रिबला अवसरी ज्याबडनमा दोन्सिमान नेपाली समाज री बिना हुल्बा डिक्सी टिबारी खाममा बाङ डिकै बिसे सुङ्से बमुला सुङ्बन डोल प्रसाद अरियाल राष्ट्रिय सभाला चोहो नारायण प्रसाद दहाल नेपाल कम्युनि

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विविधता पिछक एकतासँग राष्ट्रिय भावनाके प्रगाढ बनबैत आपसी भाइचारा आ समानताक सन्देश प्रवाह करबाबे मदद करत से विश्वास व्यक्त कयने अछि। मुस्लिम समुदायक महान पर्व ईद उल अजहा बकर ईद के अवसर पर सबमे सुख शांति तथा समृद्धिक लेल शुभकामना व्यक्त करैत राष्ट्रपति पौडेल एहि पर्व सँ मातृभूमि संगक आत्मीय सम्बन्ध आओर प्रगाढ बनबैत राष्ट्रीय समृद्धि आ विकासमे योगदान पहुँचबाक उल्लेख कयलनि अछि। मुस्लिम समुदाय सँ एहि पर्वक अवसर पर आपसी रीस राग आ द्वेष के बिसरि कऽ एक आपस में खुशी सद्भाव तथा शुभकामना आदान प्रदान करबाक तथा खुला स्थान ईदगाह वा मस्जिद सब में जाकर ईद उल अजहाक नमाज पढ़बाक संगे शुभकामना साट करैत एक दोसर के देव कहैत हर्षोल्लासक संग ई पर्व मनाओल जाइत अछि। राष्ट्रपति पौडेल विश्वास समर्पण समाज सेवाक संदेश लेबावला एहन पर्व त्यौहार सँ विशेष विभिन्न स्थान में जाकर रहल नेपालिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता बीच आपसी सद्भाव कायम करबाक उल्लेख कयलनि अछि। संगे ओ एहि पर्व सँ सहिष्णुता मेलमिलाप एकता भ्रातृत्व एवं सह अस्तित्वक आधार पर अपन अपन मौलिक संस्कृति तथा परम्परा के संरक्षण संवर्धन आ विकास में सहयोग पहुँचबाक अपेक्षा कयलनि अछि। ईद उल अजहा बकरीद के माध्यम सँ सब नेपाली बीच प्रेम करुणा त्याग सहिष्णुता राष्ट्र एकताक भावना प्रगाढ़ बनबैत समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा करबा में सबके प्रेरणा प्रदान करे कह के राष्ट्रपति पौडेल शुभकामना व्यक्त कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव पर्व सँ समाज में सहानुभूति सहयोग भाईचारा आ मेलमिलाप के और सबल बनबैत सबके एक आपस में मिलकर बैसबाक लेल प्रेरित करबाक उल्लेख कयलनि अछि। इस्लाम धर्मावलम्बी सब मनाओल जाय वाला महान पर्व ईद उल अजहा बकर ईद अवसर पर शुभकामना व्यक्त करैत ओ त्याग समर्पण बलिदानक प्रतीकक रूप में मनाओल जाय वाला एहि पर्व सँ समाज में सहानुभूति सहयोग भाईचारा एक आपस में मिलकर बैसबाक लेल प्रेरित करबाक बात बतौलनि। राष्ट्रपति यादव एहि पर्व सँ विशेषतः विपन्न तथा सहयोगक आवश्यकता भेनियार सबके सहयोग करबाक संस्कारक के प्रोत्साहन करैत सामाजिक न्याय समानताक भावना के सुदृढ़ बनेबा में सहयोग पहुँचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक देश थिक। विविधता में एकता हमरा सबक मौलिक पहचान थिक। यहाँ आ एहिठाम मनाओल जाय वाला पर्व सब समुदाय बीच आपसी समझदारी अपनत्व भाव एकताक संस्कार के मजबूत बनबैत राष्ट्रीय अखंडता आ सांस्कृतिक एकवत्ता के संरक्षण में योगदान पर्याप्त ओ विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति यादव ईद उल अजहा पर्व सँ लोकतंत्र सामाजिक

सामाजिक सहकार्यक भावना अभिवृद्धि करबामे प्रेरणा प्रदान करय से कामना कयलनि अछि। अध्यक्ष दहाल नेपालक संविधान सँ नेपाल के बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक विशेषता सहितक राष्ट्रक रूप में परिभाषित कयल उल्लेख करैत विविधता बीचक एकता राष्ट्रीय शक्ति आ सभ्यताक पहचान भेल बतौलनि अछि। एहि पर्व सँ नेपाली समाज में आपसी सम्मान सद्भाव आ सह अस्तित्वक संस्कृति के और सशक्त बनबैत राष्ट्रीय एकता के थप मजबूत बनेबाक विश्वास लेने छी। शुभकामना संदेश में ओ ई बात बतौलनि अछि। संघीय संसद सचिवालय आबयवला आर्थिक वर्ष 1983-84 के राजस्व व्यय के वार्षिक अनुमान बजट पेश होयबाक शुक्र दिन आई संयुक्त बैठक तैयारी ओ पूरा कयल जानकारी खोलौलनि अछि। सिंहदरबार स्थित नया आ निर्माणाधीन संसद भवन में हाल प्रतिनिधि सभाक बैठक संचालन भ रहल बहुउद्देशीय हॉल में काल्हि दिनक 4 बजे संयुक्त बैठक राखल गेल अछि। ओहि बैठक में प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पश्चातक नया सरकारक अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले बजट पेश करता। प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रसभाक सदस्यगण ओहि समय पहिने ही स्थान ग्रहण करबाक लेल सूचित कयल गेल अछि। संसद सचिवालयक प्रवक्ता एकराम गिरी नया भवन के प्रतिनिधि सभा कक्ष में संयुक्त बैठक चलेबाक तैयारी भेलाक बावजूदो एखन धरि फिनिशिंग कार्य पूरा नहि भेला सँ बहुउद्देशीय हॉल सँ बजट प्रस्तुति होबय लागल बतौलनि। ओ स्थान भावक कारण बजट प्रस्तुति हेबाक संयुक्त बैठक में संवैधानिक निकायक पदाधिकारी नेपाल सरकारक उच्च अधिकारी आ नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगक प्रमुख एवं प्रतिनिधि सबके आमंत्रण नहि कयल बतौलनि। मध्य प्रदेश सरकार आबयवला आर्थिक वर्ष 1983-84 के लेल वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम काल्हि प्रदेश सभा में पेश करयवला भेल अछि। प्रदेश सभा सचिवालय एहि के लेल तैयारी कऽ रहल अछि। काल्हि भिनसर 11 बजे विश्वासन प्रदेश सभा बैठक में प्रदेश प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र लाभ कर्ण मध्य प्रदेश सरकारक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करबाक प्रदेश सभा सचिवालयक सचिव बासु कोइराला जानकारी दिलनि। प्रदेश सभा सचिवालय नेपालक संविधानक धारा 184 उपधारा 2 अनुसार प्रदेश प्रमुख मार्फत सरकारक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सभा में प्रस्तुत कयल जायत। नीति तथा कार्यक्रम में प्रदेश सरकारक आबयवला वर्षक प्राथमिकता विकास योजना आर्थिक रणनीति तथा विभिन्न क्षेत्र कार्यक्रम समेटबाक नीति तथा योजना आयोग जनौलक अछि। नीति तथा कार्यक्रम में रोजगारी सृजना सामाजिक विकास GDP वृद्धि बहुवर्षीय गौरवक आयोजनक एहिठाम निरंतरता आ प्राथमिकता में रखबाक भेल अछि। एकर संगे नीति तथा योजना में कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन आ उद्योगक स्थापना में जोर देबा सन प्रदेशक नीति तथा योजना आयोगक उपाध्यक्ष राजकिशोर सिंह जानकारी देलनि। देशक विभिन्न क्षेत्र में रहल 10 औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योग सब 20,000 व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त कयलनि अछि। लगभग 6,016 रोपनी जमीन में संचालित ई औद्योगिक क्षेत्र भीतर बीतल फागुन में शांत धरि में कायम रहल 706 मध्य 638 उद्योग संचालन में रहल आर्थिक वर्ष 1982-83 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख अछि। औद्योगिक क्षेत्र में 26 उद्योग निर्माणाधीन 16 उद्योग बंद आ 26 अन्य संघ संस्था अछि। सातो प्रदेश में बालाजू पाटन भक्तपुर हटौड़ा धरान नेपालगंज पोखरा बुटबल वीरेन्द्रनगर आ गजेन्द्र नारायण सिंह मिलाकर कुल 10 औद्योगिक क्षेत्र संचालित अछि। औद्योगिक वैज्ञानिक संपत्ति के रूप में बीतल फागुन मसान धरि में 70,927 ट्रेडमार्क 90 पैटेंट 320 डिजाइन दर्ता भेल अछि। सबसे अधिक चीनिया लगानी परियोजना मध्य कुल लगानी के आधार पर अधिक चीनिया रहल अछि। ओहि अवधि में चीनक 48%, भारतक 17.9% आ एहि के अतिरिक्त अन्य के 34.1% लगानी रहल अछि। धनसाक जिलाक औढ़ी गांव पालिका स्थित प्रवाहा निवासी 28 वर्षीय श्री नयन दासक सऊदी अरब में मृत्यु भेल एक महीना भेलाक बावजूदो लाश नेपाल नहि अयलाक बाद अंतिम संस्कार नहि भ सकल अछि। दासक बीतल बैसाख 16 गते सऊदी अरब स्थित अपने कोठा में लटकि कऽ एहिमे लाश भेटल अवस्था देखल गेल। महीना दिन पुगलाक बावजूदो पारिवारिक सदस्य सब दासक लाश एखन धरि नहि पौलक अछि। घटनाक लगते परिवार सब नेपाल अनबाक लेल पहल शुरू कयलाक बाद एखन धरि ई लाश नहि आबि सकल। परिवार सब पीड़ा अपन देखलक अछि। सऊदी वापस भेल लगभग 6 मास में अपन कोठा में मृतावस्था में ई लाश भेटल। मृतक पत्नी ममता दास पति के लाश आनि देबाक लेल दाह संस्कार करबाक लेल कहिकऽ ई लाश अनबाक हेतु पहल कऽ देबाक लेल सरकार सँ आग्रह कयलनि अछि।
जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट फरार प्रतिवादी

0: पकड़ल अभियान के तीव्र बनबत विभिन्न मुद्दा में अदालत से सजाए तथा जरिमाना फैसला पर फरार रहल 16 गोटे के पकड़लक है। जिला प्रहरी कार्यालय रोथर द्वारा जारी प्रेस नोट अनुसार फरार प्रतिवादी पकड़ल गेल में विशेष अभियान अंतर्गत चेक अनादर, मारपीट, लूटपाट, बाल बालिका बेच बिखन सन मुद्दा में फरार रहल प्रतिवादी के पकड़ कर रोथर जिला अदालत गोड़ में उझलक है। सरकार द्वारा सार्वजनिक कैल गेल सार्वजनिक संस्थानक वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन 2083 देशक सार्वजनिक संस्थान सभक अवस्था मिश्रित रहल देखौलक अछि। आर्थिक वर्ष 2081-82 के अंत धरि में देश में कुल 45 सार्वजनिक संस्थान मध्य 6 निष्क्रिय रूप में अस्तित्व में रहल अछि, मुदा संस्थान कानून रूप में कायम कैकपूर्ण रूप में निष्क्रिय रहल प्रतिवेदन में उल्लेख है। अर्थ मंत्रालय बुध दिन सार्वजनिक कैल प्रतिवेदन अनुसार शेयर पूंजी में 50% से अधिक सरकारी नियंत्रण में रहल आ वस्तु तथा सेवा के उत्पादन तथा वितरण करवाक उद्देश्य स्थापना कैल गेल निकाय के सार्वजनिक संस्थानक रूप में वर्गीकृत कैल गेल अछि। कर प्रकृति के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में 10, वित्तीय क्षेत्र में 10, सेवा क्षेत्र में 11, व्यापारिक क्षेत्र में 4, सामाजिक क्षेत्र में 5 तथा जनउपयोगी क्षेत्र में 5 संस्थान रहल अछि। जनकपुर चूरूर कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कंपनी लिमिटेड, नेपाल ओरियंट मैग्नेसाइट प्राइवेट लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवा केंद्र, नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी नेपाल लिमिटेड मिलाकर 6 संस्थान कानून रूप में अस्तित्व में फैलाक बावजूदो कोनो व्यावसायिक गतिविधि संचालन में नहीं रहल अछि। नेपाल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवा केंद्र, नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी नेपाल लिमिटेड से लंबा समय से वित्तीय विवरण समेत प्राप्त नहीं भेलाक कारणे विश्लेषण के लेल 45 मध्य 43 संस्थान के मात्र प्रतिवेदन में समावेश कयल गेल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत में रोजगारी, शिक्षा आ तालीम से बाहर रहल युवा सभक संख्या 10 लाख निकट पहुँचल आ एहिठाम मोह भंग आ दिशाहीनता के जोखिम बढ़ल अछि। समस्या समाधानक लेल कोनो पहल नहि कयल गेला पर सन 2031 धरि में रोजगारी, शिक्षा आ तालीम में नहि जायवला 16 से 24 वर्ष उमेरक समूह सब युवाक संख्या 12,50,000 अर्थात हरेक 6 युवा मध्य एक गोटे में ई समस्या रहल हाल सार्वजनिक प्रतिवेदन में ई चेतावनी देलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।
1: नेपाले धुम्रपान व सुर्ती दक्षी सुई पेडो मनो तसिना चङ्गो दु तर ठो लट टोटी फै
2: छि थो लट टोटी गु खसा थौ हे गोप्पे व ताम वाक नेनी गु सेवा क्विटल्यान्ड 11:32 स्वापु तया दिस
1: थो सेवा ज्याकु इले का फै
2: वाचाका दिस धुम्रपान व सुर्तिया लट टोटी त नेनी गु सेवा क्विटल्यान्ड 11:32
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र टेकुए।

ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार की आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का वार्षिक बजट संघीय संसद की संयुक्त बैठक में कल किया जाएगा पेश। संसद में पार्टी की भूमिका अधिक प्रभावकारी बनाने का नेपाली कांग्रेस का निर्णय। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल द्वारा विदेश में रह रहे नेपालियों से नेपाल वापस लौटने का आग्रह। और बिहार के पटना के गंगा नदी में नाव डूबने से हुई 5 लोग लापता। अब समाचार विस्तार से। सरकार का आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का वार्षिक बजट को कल संघीय संसद की संयुक्त बैठक में पेश किया जाएगा। संघीय संसद की कल दोपहर 4 बजे होने वाली संयुक्त बैठक में अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले आर्थिक वर्ष का बजट प्रस्तुत करेंगे। संघीय संसद सचिवालय के अनुसार बजट प्रस्तुति की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नए भवन के प्रतिनिधि सभा कक्ष में संयुक्त बैठक आयोजित करने की तैयारी थी, लेकिन अभी तक फिनिशिंग कार्य पूरा नहीं होने के कारण बजट प्रस्तुति बहुउद्देश्यीय हॉल से ही की जाएगी। यह जानकारी संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी ने दी। संघीय संसद में प्रस्तुत होने वाले आर्थिक वर्ष के बजट का रेडियो नेपाल द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। नेपाली कांग्रेस ने संसद में पार्टी की भूमिका को और प्रभावकारी बनाने का निर्णय लिया है। आज सिंहदरबार में आयोजित कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बाद प्रमुख सचेतक वासना थापा ने बताया कि बैठक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह संसद में उपस्थित न होकर जनता के प्रति उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शाह के संसद में उपस्थित न होने तथा गणतंत्र दिवस समारोह में संबोधन न देने के विषय पर कांग्रेस ने गंभीर ध्यानाकर्षण व्यक्त किया है। प्रमुख सचेतक थापा ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी की धारणा है कि आगामी बजट में आधारभूत संरचना की तुलना में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि वर्तमान में चर्चा के लिए सार्वजनिक किए गए गैर आवासीय नेपाली संबंधी विधेयक के मसौदे पर सभी संबंधित निकायों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की जाएगी। आज मंत्रालय में एसोसिएशन ऑफ नेपाली ओरिजिन ANO को केंद्रीय समिति की ओर से उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पंत के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में सार्वजनिक किया गया मसौदा एक प्रकार का शून्य ड्राफ्ट है और इसे सभी पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। ANO को ध्यानाकर्षण पत्र स्वीकार करते हुए मंत्री खनाल ने बताया कि उन्होंने इस विधेयक के संबंध में एक प्रश्नावली तैयार की है और संसद में पेश करने से पहले इस विषय से जुड़े सभी सरोकार वाले पक्षों से राय और सुझाव लिए जाएंगे। सरकार के प्रभावकारी प्रबंधन के कारण देश में धीरे धीरे सिंचाई योग्य क्षेत्रफल का विस्तार होता जा रहा है। अर्थ मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्ष की मंत्रालयगत प्रगति विवरण के अनुसार ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय द्वारा संघीय स्तर पर संचालित परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधा 15,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुँच गई है। 8 महीने पहले बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बीपी राजमार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 2 दिन पहले पूर्वाधार विकास सचिव गोपाल प्रसाद सिगदेल और नेपाल के लिए जापान के राजदूत मैदा तोरू द्वारा शिलान्यास किए गए सड़क पुनर्निर्माण कार्य ने गति पकड़ी है। उक्त राजमार्ग का पुनर्निर्माण जापान सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। पिछले वर्ष आई बाढ़ और भूस्खलन से बीपी राजमार्ग के लगभग 30 किलोमीटर सड़क खंड को नुकसान पहुंचा था। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका के आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग तथा नेपाल सरकार के निवेश से राजमार्ग का उन्नयन सहित पुनर्निर्माण किया जा रहा है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2082-83 के अनुसार भूकंप से क्षतिग्रस्त 1136 स्वास्थ्य संस्थानों में से फागुन 2022 तक 1051 संस्थानों का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है। निजी आवास पुनर्निर्माण के तहत फागुन 2082 तक 835,185 लाभार्थियों की पहचान की गई, जिनमें से 834,303 लाभार्थियों

0: हुई भारी वृद्धि से निर्माण व्यवसायियों पर पड़े आर्थिक और मानसिक दबाव को संबोधित करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। दोनों संगठनों ने आज अलग अलग विज्ञप्ति जारी कर निर्माण व्यवसायियों की समस्या समाधान कर समग्र अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने की मांग की है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबुजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
5: ए हो र,
1: एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
6: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ने विदेश में रह रहे नेपालियों से स्वदेश लौटने का आग्रह किया है। धादिंग जिले के त्रिपुरा सुंदरी गांव पालिका एक स्थित सल्यानटार के नरसिंह धाम में आयोजित एक महीने लंबे पुरुषोत्तम महोत्सव के अवलोकन के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभामुख अर्याल ने कहा कि देश के संविधान और कानून का पूर्ण पालन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सार्वजनिक किए गए भाद्र 23-24 के आंदोलन संबंधी अनुसंधान प्रतिवेदन को लागू करने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसे द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि तत्कालीन सरकार द्वारा गठित गौरी बहादुर कार्की आयोग की रिपोर्ट अधूरी, अपूर्ण और अस्पष्ट होने के कारण की धारणा को इससे और पुष्टि मिली है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वयं कार्की आयोग के अध्यक्ष पर भी सूक्ष्म जांच की आवश्यकता बताई है, जिससे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि चुनाव से पहले रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने के पीछे नियोजित उद्देश्य होने की आशंका और मजबूत हुई है। मुस्लिम समुदाय का दूसरा प्रमुख पर्व बकरीद अर्थात ईद उल अजहा आज देश भर की मस्जिदों में मनाया जा रहा है। ईद उल फित्र अर्थात रमजान पर्व के 70वें दिन बकर ईद मनाने की धार्मिक परंपरा है। मुस्लिम समुदाय के लोग आज सुबह स्नान कर नजदीकी मस्जिद या ईदगाह में जाकर सामुदायिक नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं देने की परंपरा भी निभाई जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पटना में आज सुबह एक नाव गंगा नदी में पलट गई। नाव में सवार 7 लोगों को बचा लिया गया है। पटना जिला प्रशासन ने बताया कि अब तक 2 लोगों के शव मिले हैं। 7 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि अन्य 5 लोग लापता है। बचाव कार्य अभी भी जारी है। प्रशासन ने बताया कि आज सुबह लगभग 6:45 बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ घाट के समीप बिंद टोली के 14 लोग नाव पर चढ़ कर समस्तीपुर जिला के सुल्तानपुर दियारा मोहिउद्दीन नगर गए थे। अक्सर लोग परवल तोड़ने और खेती किसानी के दूसरे कामों के लिए वहां जाते हैं। वापस लौटने के क्रम में तेज हवाओं के कारण सुल्तानपुर दियारा समस्तीपुर के पास नाव पलट गई। खबर लिखे जाने तक 7 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन 5 लोग लापता है। अब तक 2 शव बरामद हो चुके हैं। समस्तीपुर और पटना जिला प्रशासन मिलकर राहत कार्य चला रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार की आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का वार्षिक बजट संघीय संसद की संयुक्त बैठक में कल किया जाएगा पेश। संसद में पार्टी की भूमिका अधिक प्रभावकारी बनाने का नेपाली कांग्रेस का निर्णय। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल द्वारा विदेश में रह रहे नेपालियों से नेपाल वापस लौटने का आग्रह। और बिहार के पटना के गंगा नदी में नाव डूबने से हुए 5 लोग लापता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुने

0: खोल दो पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, खोल दो पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आप सबके प्यार व मिठास परे हिंदी सदाभार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में, और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र
1: और मैं रमिता यादव,
0: और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्राविधिक मित्र पुष्प रत्न वज्राचार्य जी।
1: जी हाँ दोस्तों, मीडियम वेव 576, 684, 792, 810 और 1143 किलो हर्ज के साथ साथ FM बैंड 98, 100 और 103 मेगा हर्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np, www.onlineradionepal.gov.np और www.psbnepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं, और इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं।
0: और इसके अलावा बहुत से मित्र मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज पर लाइव देख भी रहे हैं, तो जो नहीं देख पा रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और जैसे कार्यक्रम शुरू होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप जुड़ पाएंगे, तो अभी आप ट्राई करना शुरू कर दें। और साथ ही आप सबसे विनम्र आग्रह भी है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी नए मित्र हमारे साथ जुड़ें और इस बड़े परिवार का हिस्सा बने।
1: जी हाँ दोस्तों, हर गुरुवार रात 10 बजे के हिंदी समाचार के तुरंत बाद करीब 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में आज है बारी आपके द्वारा भेजे गए प्यार भरे पत्र और फेसबुक कमेंट्स की।
0: जी,
1: और ये पहला पत्र है,
0: ये पवन कुमार पंकज जी का, लेकिन हम अपने इस पत्र को हम पढ़ेंगे बाद में। हम सब अपने जितने भी मित्र हैं हमारे, खासतौर पर इस्लाम धर्मावलंबी, उन सबको बकर ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे तरफ से धन्यवाद भी क्योंकि उनकी वजह से आज हमें छुट्टी मिली है कहीं कहीं। यहाँ तो हम नहीं रोक सकते, प्रसारण है तो यहाँ तो हमको आना ही पड़ा, लेकिन बहुत जगह पर हमें छुट्टी मिली है तो इसके लिए हम थोड़े आभारी भी हैं,
1: शुक्रगुजार हैं।
0: और हमारे प्राविधिक मित्र गीत सुनाने के लिए तैयार हैं, और ईद पर एक अच्छा सा गीत हमारे प्राविधिक मित्र पुष्प रत्न वज्राचार्य जी की ओर से।

0: और ये पत्र है पवन कुमार पंकज जी का वैशाली विहार से. ये लिख रहे हैं, रेडियो नेपाल के मधुरिमा कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आदरणीय मुकेश सर, अमिता मैम, सीमा मैम व पुष्प सर को सादर व सप्रेम अभिवादन. आज दोपहर में ये दुखद खबर सुनने को मिली कि मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र अब हमारे बीच न रहे. तकरीबन 2 दशक पूर्व हम उनसे परिचित हुए थे जब हमने अपने मित्र को जन्मदिन के अवसर पे वाणी प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक उजाले अपनी यादों के गिफ्ट स्वरूप भेंट की थी. उनकी शायरी ऐसे थी कि आम जन भी सही ढंग से समझ जाते. बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था. उनका मूल नाम सैयद मोहम्मद बशीर था. उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में उजाले अपनी यादों के, आस उजालों की परियां और रोशनी के घरौंदे शामिल हैं. उर्दू साहित्य में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 1999 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. उनको श्रद्धांजलि स्वरूप चंदन दास के स्वर में गाए गजल ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, सुनना चाहूँगा. आपका श्रोता पवन कुमार पंकज, स्थान वैशाली बिहार.
1: जी, बहुत खूबसूरत पत्र पवन जी. और चलिए, हम शायद हमें हमारे जहन में ये बात आती नहीं आती, आपने हमें इतना पूरा का पूरा पत्र आपने उनके प्रति समर्पित किया. तो सबसे पहले तो उनके प्रति रेडियो नेपाल की ओर से, मधुरिमा कार्यक्रम की ओर से बशीर बद्र जी की के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि. और एक बहुत बड़ी क्षति हुई है हिंदी और उर्दू साहित्य जगत में बशीर बद्र के रूप में, तो ये है. और हम सब की ओर से एक बार फिर से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि. और अब हम इनकी रची हुई गजल हम सुनने वाले हैं पवन जी की फरमाइश पर. तो सुनते हैं ये प्यारी सी गजल.

0: सन 1983 में रिलीज हुए एल्बम कितने ही रंग से, यह गजल आपने सुनी चंदन दास की आवाज में। इसके गीतकार हैं, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, बशीर बद्र साहब, जिनका आज निधन हो गया, और एक बार फिर से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि। ये पत्र है लायन सूर्या जी का, नई दिल्ली भारत से।
1: जी,
0: इन्होंने लिखा है कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। क्या तगड़ी लाइन है कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: और आगे भी है कि जाया न कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, जाया न कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता
1: कौन है। क्या बात है,
0: बहुत खूबसूरत, उम्दा। और उन्होंने कहा कि मुकेश भाई एक गाना सुना दीजिए अपनी आवाज में। ओ माय गॉड, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।
1: बहुत बढ़िया है, तो आप खुश, आपको तो खुश होना
0: खुश होना चाहिए। पर हाँ, ये पता मुझे पहले पढ़ना चाहिए था और तैयारी करके आनी चाहिए थी। एनीवेज, और इन्होंने कहा कि गीत वक्त का ये परिंदा हमें उपकरण के माध्यम से भी सुना दें।
1: जी
0: जी, तो मैं चंदा तुझे हो देखने को

0: रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तुम उदास तेरे साथ साथ मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया, तुम मिले। शुक्रिया।
1: क्या बात है।
0: पता नहीं मैं ठीक से गा नहीं पाया, मैं जानता हूँ, पर श्रोता की दिली तमन्ना से तो पूरी पूरी करनी पड़ती है
1: जी।
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया ये फरमाइश के लिए भी। और इन्होंने कहा कि वक्त का एक परिंदा ये गजल इनको सुननी है, तो हमारे प्राविधिक मित्र तैयार बैठे हैं सुनाने के लिए। सुनते हैं ये गजल।

0: और ये गजल आपने सुनी जसवंत सिंह की आवाज में, इसके गीतकार हैं योगेश और संगीतकार निखिल विनय। एल्बम है शिखर, जो कि सन 1995 में रिलीज हुआ था।
1: और ये पत्र हैं श्याम सुंदर माहेश्वरी जी का, फारबिसगंज बिहार से। लिख रहे हैं, सहानुभूति तो हर धर्म का प्राण है, हर मानव की आवश्यकता है, हर प्राणी की अपेक्षा है। सहानुभूति संसार का वो सौंदर्य है जिसने सदैव एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होने की प्रेरणा प्रदान की है। ये वो शक्ति है जिसने सदैव प्राणी से प्राणी को आपस में जोड़कर रहने की कला प्रदान की है।
0: वाह।
1: जैसे किसी रोगी आदमी को च्यवनप्राश खाने को दिया जाए और वो अपने शरीर में किसी नई प्राण चेतना का अनुभव करने लगे, ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी व्यक्ति की सहानुभूति मिल जाए तो उसके जीवन में नया माधुर्य, नया सुकून और नया आनंद उपलब्ध हो जाता है। और ये
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: हाँ, बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक बात है ये। और इन्होंने फरमाइश की है, सोहन जोशी ने फरमाइश की है छत्तीसगढ़ भारत से। इन्होंने कहा है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, गाने सुना।
0: मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो बिना देरी के सुनाएंगे इसको, सुनते हैं।

0: सन 1971 में बनी फिल्म अंदाज से गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसके गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। और भागवत चौबे लाडला जी हैं सागर मध्य प्रदेश से, और ये सिर्फ लाडला जी नहीं है, इनके साथ लाडली जी भी हैं
1: और चौबे भी लिखते हैं
0: भागवत चौबे जी।
1: भागवत चौबे
0: और इनकी ये सब परिवार हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, और इन्होंने बस सीधे मुद्दे पर आए हैं। उन्होंने कहा है कि फिल्म अगर तुम ना होते का टाइटल सॉन्ग जो है उसकी जो फरमाइश है वो हमारी पेंडिंग है जी।
1: क्या बात है
0: ये कोई बात नहीं है, ये उनकी शिकायत है।
1: शिकायत तो है लेकिन इन्होंने जिस लहजे में लिखा है उसके लिए मैंने कहा क्या बात है, क्या बात है जी।
0: तो अब तो काफी देर हो चुकी है, अब हम देर नहीं करेंगे, सीधे आते हैं हम भी मुद्दे पर और सुनते हैं ये गीत।

0: बस मेरा सब कुछ है, जान क्या चीज है।
1: और ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, फिल्म ये रात फिर ना आएगी से, और आशा भोसले भी हैं। इसके गीतकार हैं एसएस बिहारी और संगीतकार ओपी नैयर।
2: और अब हम कार्यक्रम के अंत तक आ चुके हैं और ये आखिरी पत्र है कार्यक्रम का। रमेश कुमार शाह जी लिख रहे हैं
1: जी,
2: और इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है, कहां से हैं ये।
1: और इसी तरह रामलाल सुमन जी हैं मलेशिया के पेनांग से, और इन्होंने कहा है कि मिलेगा तो एक सॉन्ग बजा दीजिएगा फिल्म जीना तेरी गली में, और गीत का बोल है जाते हो परदेश पिया, और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ सर इन्होंने कहा है कि ये सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। तो इसका इनका गाना हम जरूर सुनवाएंगे, लेकिन इस गाने को रखने से पहले और आप सबसे विदा लेने से पहले कहना चाहते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए जरूर दें। साथ ही अपने पत्र में शेरो शायरी कविता जोक्स आदि जरूर शामिल करें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार, काठमांडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 634। ईमेल पता madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। और अब हम सुनेंगे जीना तेरी गली में से ये गीत, फिल्म जो कि 1991 में रिलीज हुई थी, अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की आवाजों में। इसके गीतकार हैं नक्श लयालपुरी और संगीतकार बाबुल बोस। और इसी गाने को रखते हुए आज की मधुरिमा श्रृंखला से प्रावधिक मित्र पुष्परत्न उपाध्याय जी के साथ मैं मुकेश कुमार मिश्र
2: और मैं रमिता यादव
1: आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहें रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि।